0: ऐसा विचार वो वाइब्रेशन से आपको रूप से उठा के विचार जैसे कि अगर अनुपठन ठोकी ग्रसी एक पास से मुझे रूप से उसमें पड़े उसने कहा तो ऑटोमेटिक होकर से वापस करता है साथ खड़ा बैठे हो अगर अपने आप को सतर्क विचार उठकर मतलब करना से बच्चा विचार ये कभी आप सतर्क सब रूप में सतर्क हो तो बात सोच सकते आतंकर आ जाता है सर सफाई का महत्व सर सफाई का तरीका वो ध्यान दिए पंद्रह बैठक पिछले मामला सब प्रसन्न बुझाते रहता है सर्वप्रथम से संबंधित के मध्य प्रदेश भारत हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर जयमन सिंह प्रति हमारे बैठी
1: समय छोड़ा तो खाली मुख्य जिस पर आपको अपने सब कुछ की सफलता

चाहिए। तो ऑर्डर करो अनुसार खाना से नहीं चाहिए। हाँ दीदी, हम किसी पास से देने तो पूरा जूस कर पूरा तेल भर लगा हम के पूरा दिन चल गए तो कैसे चिंता कर लो। पाँच मिनट गुरु जी से पास से साथ आओ घासरी बाजार किसान चौक के लगे सिद्धार्थपुर के तले पर आप सब खुद के लगे पर और जहाँ पर लगा उसी भाव अनुसार सुनता दीदी तो हम देखो ठीक बात है दीदी। आप पहले यहाँ मंगाई आप सोच हमें पाँच सौ एक गुरु जो है

तथा नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की प्रतिबद्धता थी। वे मिल स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में देती यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ता कौशल्य अस्पताल पास करना आर्थिक अनुरोध कराती।

0: ऑक्सीजन विश्वासी पशु पक्षी को औषधि उपचार सुपथ मूल्य में प्रयोग
1: स्थान श्रेष्ठ एग्रोभेट खास गरी किसान चोकदेखि दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालयको पूर्व साइडमा।

0: सिर्फ फैली सुझाए स्वच्छता सुरक्षित परिवार
1: खेती
2: बाड़ी
1: समस्या
2: है।

होई सत्रे खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा बजे दूर रही तनाव नियंत्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन अदराम निशाना रोगों से बांधी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुवार सह कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित संदेश।

0: debemos te pedir que venga a nuestra vida, cosa que debemos te pedir a tu hija para difundir a tanto mi boca. Gracias a tu hija, Pablito, si te caes a ti. Yo voy a tocar la boca, no te la tengo tan lejos, pero no te la tengo, no te la tengo, no te la tengo, pero hay que ver que no te la tengo, pero sí, hay que ver que no te la tengo, pero हमें खाना चाहिए चाहे चाहिए चाहे बोलो बाहर खाते हैं उन्हें साथ से मिठाई से बोलते हैं चाहे जाली जाले पर अन्य तब तक पानी से एकदम खाली है तो पर्याप्त होता है लगाए पर जाले में से जाली में होता है एकदम आवश्यक पर जाले जाले पर चारों पर तेरे सितार बात पर उसके पसीने में पर एकदम हाँ बोले तो रुको चला बच्चन बना बना रखा रहता तो रुको एकदम भारी भारी रुको नहीं छोटी छोटी रुको इंद्रा डाले तो रुको स्टेल बना रखता सिक्का के खाई पे वो एंड पसंद खासे रेट पूरा लगाया लगा छोटी छोटी तो वो कर बात मत है मत है जाते स्वाइट अभी सिक्का के डिहेट
1: माटी बिल्कुल भर बिल्कानी और इस प्रकार के लिए जहाँ संपादित है सूची जहाँ सभी जो कपड़े जो है तो उसे के समय अब तो हाथ तक ये भीतर कर ना को भाव के नहीं कर सकते जो भाव के ना तो संपादित
0: सुपना के सुपर पेड़ के लिए हम जो संजय से लेते हैं वो पानी चाहिए देती है यानी अम्मा ने के पानी से स्थिर करके की धूप नहीं है अन्य दिन विदेश के सुपर खेती है तो खाली आधा दिन बस खाली तीन महीने के बाद तब ये हम जो सुपर बात सुपर वाले पूरे पक्के पक्के घर वाले पंद्रह सच्चे वाले कि हमें ये तलाश तब हमें एकदम सच्चे लोग बैठना गर्मी में एकदम हमें सच्चे लोग
2: ये बर्खा कौनसा नेपाल आपूर्ता ये बर्खा मंचन नेपाली समिति को स्थित नेपाल के चलाको बर्खा वसं पुरुष से मध्य नेपाल संपूर्णा वर्तियाँ में मंचन इतना उस समय लगाना धान बेचने का तैयारी करते गए किसान मुकला तैयारी और ना वो पानी पड़ने से धान बगीना स्वाद बिना मौसम विभाग सुझाव दिया इतना आज प्लेटर बाबा मौसम ब्रेडी का क्या हूँ कल संध्या के पांच बजे प्रदूषण बाबा बाबा मौसम ब्रेडी के खंडित बाजी तब समुद्र आज रात की संध्या का विषय था और मई दिन में भी जाने के लिए

0: समय हो। लागू पदार्थ को एक पर एक प्रयोग रक्त मानसिक समस्या र पढाई में असर पुर्याउन सक्छ।
1: साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं।
0: पदार्थ भए खुला कुरा गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन,
1: लागू पदार्थ बाट टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौं।
0: रेडियो गुरुमा एफएम को सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रियाबाट चलित जारी छ।

स्वास्थ्य जांच गरी निर्देशक उठा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै वित्तीय पूर्वाधार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वतंत्र अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्तम तथा

0: 6 बजे हमारा संदेश को अपना हर स्वागत बात सुखिया दिन संचालित हुआ उत्पादित हमारा संदेश पर दिया का साथ ही राजापुर बाकी रेडियो प्रतिबंधित एम कोहलपुर और रेडियो हाथीमाधो चांदी गाँव पारी का माध्यमों से प्रसंग प्रसारण की बात हमारा संदेश पर डाली मुख्य मुख्य समाचार के शीर्षकों से 12 पर्दे में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू मतब्रह्म ब्रह्म सदस्य तीजना पकड़ प्रभारी का निगरानी कर रहा प्रणाली लड्डिया का तटबंधन राजापुर गिरवा का बस्ती सुरक्षित 13% की प्रगति थारू राम थारू समुदाय का परम्परागत धर्मस्था और धर्मनाथ प्रथा संरक्षण संबंधित विधेयक 15 नगर सभा से पास वो आवश्यक 5 घंटा की घटना है और 63% करना प्रधानमंत्री से आग्रह कराई समाचार से
1: भारतीय नगरपालिका में समुदाय स्तर में स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर परिवार का प्रत्येक सदस्य वर्ग स्वास्थ्य अवस्था जोखिम तथा आवश्यकता संबंधी तथ्यांक का संकलन देकर नियमित अनुगमन करना उद्देश्य कार्यक्रम संचालन में नियंत्रित हो लालू अक्टूबर 2082-83 से परिवार केंद्रित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य किशोर किशोरी स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य स्वर्ण तथा निशाना रोग का रोकथाम और ज्येष्ठ नागरिक भवन का स्वास्थ्य संगठन लगायत का सेवा देते रहेगा यही स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर स्तर समुदाय स्तर समय विस्तार करना कार्यक्रम लागू करना करते बारह नगर पालिका का स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविंद पवन

टिका ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप खाई जंक फूड कम करी सन्तुलित खाना खान रुचि स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो पूर्वाचार्यों का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य बढ़ती जनहित

सुशासन और पारदर्शिता का मुद्दा में सहकारी के संबंध में रहकर बताने भाई भी हत्या अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगे ने जानकारी दी को अवसर घूमे इसलिए ठूल क्षति हुई बताने भो। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेता डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने भी लोकसभा को उदय नेपाली राजनीति में नया मोड़ का रूप में भेटा को सुशासन का स्थायित्व का केन्द्रीय केन्द्रित होने सुझाव दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपतिले चीनको कम्युनिष्ट पार्टी र भारतको राजदूतता लगायतबाट पनि शुभकामना सन्देश आएको थियो जसले महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा सुनाइएको थियो।

0: तथा प्रतिफलम पूर्व आगाही में परिणत हो सकता। इसके वन वन्य जंतु वातावरण और मानव जीवन में गंभीर असर पार्दछ। इस कारण सुखा क्षेत्र व जंगल आस पास आगो न पाल्नुहोस्। धूम्रपान का अवशेष सुरक्षित रूप में व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कतै धुआं वा आगो देखिएमा तुरन्त सम्बन्धित निकाय वा समुदायलाई जानकारी दिनुहोस्।
1: आधार डाक्टर प्रकार की पोषा कराई अस्पताल ऐसी
2: सामाजिक सुरक्षा पुलिस को स्वास्थ्य बीमा सुविधा वेबसाइट जिसके आधार

0: के मायने को सुनकर समाप्त संख्या पर पता की गई। सन 1979 जून 78 दिन अमेरिका को राज्य शहर में शुरुआत घटना
1: आज काल चाहिँ एकदमै जरुरी छ किनभने

0: कुछ नहीं पाता yeah. वो आपको नहीं समझेगा कुछ करेगा वो सब कुछ आप दिखा नहीं रहता
1: दिखा वो बिजली को कर सकती का दिखा बताए वो कम लोग पाएगा दिखा साफ करके दिखते मुझे मैं थोड़ा ठप रहेगा वो खास देखा रातिक समय में और बिस्तर में जैसे कि कटे निकल आएगा थोड़ा कटे पाठ है दिन भाग से निकल रहा है संस्था

खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिरा मशीन रही, तनाव नियंत्रण करी, आज निर्णय कार्य जीवन अतरा निशा मशीन स्वस्थ जीवन अपनाई।